0: ओके जनाब, नो टेंशन कॉस्मेटिक्स पेक्सन लाइव प्रोग्राम था सो स्पॉन्सर केश बिल्कुल सिबल कलर थे वर्सेस सुख दे रहे सर। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: डियर मनना से खुशहाल से के दरमन से कुर्बान सो खबर के देखम से ना
1: दाऊद
0: मलंग साहब अल्लाह से माशाल्लाह वो सब मजीदोर राउंड है सिग्नल लगा सीधर सर बिल्कुल एज सिग्नल दिशा अफनान मणल सुन शेटोल दगेदल सर मैं अफनान अवल मण अवल वैसे घबरा हुए जरूर बट इनकी जी कैसे ख्याल बिल्कुल सनंगे शे जोड़ी बरबार ये वक्तों में से जो नशे दी बिल्कुल मैदेव तेल चिकमे दऊद भाई से मल कड़ी दया मुसलमान जबार बार नोटेंशन विटामिन सी फेस वाश सिर्फ मलवार से बखल शी
1: अच्छा
0: बिल्कुल फेस वाश से मलवार से बदी मसले बदी खत्म शीशा
1: बिल्कुल
0: अवेलेबल
1: वालेकुम
0: सलाम कुर्बान सड़ा शे शेर चेत शही है अच्छा अच्छा दे दे पड़ा ताल कितने कल वाग से लगता खबर है देखा वाला तंदाई चापी के लग रहा निजी कदे चित्र का तुम्हारा खुशा खबर है दोबारा था तो काल और प्लिको में हाँ रेडियो हो रहे थे वाह वाह वाह वाह डेरा मन से पूछूमा डेरा मन ने से खुशहाल है चिकमान भाई चिकमान गाना डेरा मन डेरा।

रानी फ्रॉम चांसर। बोले क्या हाल है? ठीक है भाई, मेरे अबू आज बाजार गए हैं और मैंने अपने अबू से नो टेंशन मीटर मसीह फेस वॉश मंगवाया है। आई एम मेरे मन मेरे हाथ से खुशहाल है। बिलाल बिठी नहीं, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई, जाना भगवान शो और शिकाश में वाह वाह देर खबर मन से SMS

0: बदगुमानी भी हो सकती है। तो बदगुमानियों से फ्री दिन बहुत जरूरी है जनाब, और बदगुमानी जो है हमेशा अच्छा गुमान करना चाहिए। और ये है केसन एच पाकिस्तान का केसन टी टाइम चाय। मैंने आज खत्म कर ली है भाई,
1: यार
0: आप पी रहे हैं या पीने वाले हैं? हाथ में कप है क्या? चले जो एंजॉय करेंगे चाय को और साथ में इस कलाम को भी।

जी जनाब, कैसे नेचुरल पाकिस्तान के प्रोडक्ट आप लोगों के पास मौजूद हैं? डेरा टांग और पहाड़पुर में लोग मुझे सुन रहे हैं इस वक्त। और जनाब, आपका हर अच्छा स्टोर, हर छोटा बड़ा स्टोर जहाँ से आप ब्यूटी के प्रोडक्ट खरीदते हैं, टांग में मौजूद हैं, पहाड़पुर में या फिर डेरा में, तो हर जगह आपको ये कंपनी नजर आती होगी। और वजह क्या है इस कंपनी की हर जगह नजर आने की? वजह है आपकी ढेर सारी मोहब्बत, हमारा ढेर सारा म्यार, हमारे ढेर सारे रिजल्ट जो आपको हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर मिलते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट उठाते हैं, चाहे शैम्पू खरीदे, चाहे केसन का ऑयल खरीदे, चाहे हमारे 7 किस्म के साबुन खरीदे, चाहे हमारे 5 किस्म के फेस वॉश खरीदे, चाहे हमारी क्रीमें खरीदे, ग्लूटावाइट खरीदे, या फिर जाफरानी खरीदे, या फिर परफ्यूम खरीदे, या पेन किलर खरीदे, या फिर वजन को कम करने के लिए, या फिर वजन को बढ़ाने के लिए, अपने मैदे को ठीक रखने के लिए, या फिर अपने दर्दों को खत्म करने के लिए केसन के कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, आपको कभी पछतावा नहीं होगा, आपको अभी पछतावा नहीं होंगे, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आपके पैसे तो जाया हो गए। यही वजह है कि जनाब, आप एट ए टाइम एक वक्त 3 बड़े स्टेशन के ऊपर हम आपके साथ मौजूद रहते हैं और इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास होती है जी। एक ना सिर्फ डेरा के लोग हमें जानते हैं, ना सिर्फ पहाड़पुर के, बल्कि अब तो टांग वाले जाने लग गए हैं, बल्कि टांग वालों की तो आंखें खुल गई हैं भाई।

0: जनाब चार चार बजे तक आप लोगों के साथ में मौजूद हूँ। कैसे नेचुरल पाकिस्तान के ढेर सारे प्रोडक्ट हैं जनाब, जिन्हें आप इस्तेमाल कर रहे होंगे। साबन जो है केसन की जो मौजूद है आप लोगों के पास भाई, बहुत ही बढ़िया किस्म के और हैंडक्राफ्टेड सोप हैं, हैंड मेड सोप है, हाथ से बने हुए नेचुरल ऑर्गेनिक सोप है और हर एक प्रोडक्ट के अंदर जान बसी है। यकीन जानिए हर एक साबन के अंदर केसर नेचुरल पाकिस्तान के जो 7 हैंडक्राफ्टेड सोप हैं, जिसके अंदर आप जाफरानी साबन को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल इस वक्त जो किया जा रहा है हमारा प्रोडक्ट वो जाफरानी है। और जाफरानी इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि भाई हर दूसरी कंपनी ने जाफरानी क्रीम बना ली है, हर दूसरी कंपनी जाफरानी क्रीम बना के बैठी है। एक रुझान चल पड़ा है, एक ट्रेंड चल पड़ा है कि भी जाफरानी क्रीम ही नेचुरल वो सोर्स है जो आपको कुदरती निखार देती है, कुदरती खूबसूरती देती है। और बिल्कुल ये बिल्कुल जेन्युइन बात है और ये तो अब लोग कर रहे हैं। हम तो 3 साल से आप लोगों के लिए हमने ये क्रीम बनाई हुई है जिसका नाम है जाफरानी क्रीम, जिसके अंदर आपको जाफरान मिलता है कोम्पलों की सूरत में, तनों की सूरत में, छड़ियों की सूरत में, स्टैंड्स की सूरत में, तिंकों की सूरत में, और आपने खुद इसको मिक्स करना होता है क्रीम के अंदर और इसको इस्तेमाल करते हैं जब क्रीम पीली हो जाती है। तो ये तरीका कार हमने आपको 3 साल पहले बताया है भाई, 3 साल पहले हमने ये ट्रेंड स्टार्ट किया था कि भाई जाफरान को अपनी स्किन के रूटीन में इस्तेमाल करें। 24 घंटे में जाफरान का आपके चेहरे के ऊपर लगना बहुत जरूरी है। जाफरान आपको जवान कर देगा, जाफरान आपको गोरा कर देगा, जाफरान आपको हसीन कर देगा। और लोगों को भला चाहिए क्या? जी बिल्कुल यही चाहिए होता है, गोरा गोरा सा जिस्म, गोरा गोरा सा चेहरा, ठीक है जनाब, और साथ में हसीन सा चेहरा, खूबसूरत चेहरा। और वो केसन नेचुरल पाकिस्तान आपको मुजर केमिकल से हट करी कंपनी जो नेचर के ऊपर बिलीव रखती है और जिसकी दस्तरस है जनाब, केसन के प्रोडक्ट आपकी दस्तरस तक हम पहुंचाते हैं, कुदरत के खजाने आप तक पहुंचे हैं। तो जनाब ये जो ब्रांड है जाफरानी ब्रांड, यानी कि जिसके अंदर हम आप लोगों को साबन और क्रीम प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत ही पॉपुलर है इस वक्त। और मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूँ केसन मोबाइल कंपनी है जो इस वक्त आपको क्रीमें तो बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं, लेकिन जाफरानी साबन को बनाना बड़ा मुश्किल है, जाफरान को ऐड करना बड़ा मुश्किल है। कौन बनाएगा? कोई और ना बनाए, बनाए केसन बनाएगी जनाब। केसन का जाफरानी साबन संदल और हल्दी के साथ आप लोगों के पास मौजूद है और इसको इस्तेमाल करने वाले बताते हैं, क्या बताते हैं भाई जनाब, कहते हैं एक दफा फिर से जवानी लौट आई है, क्योंकि जनाब जो जाफरान है ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, ये झुर्रियों को खत्म करने का भी काम करता है, दाग धब्बों को खत्म करने का भी काम करता है। और जब संदल इसके साथ ऐड हो जाए, जब हल्दी इसके साथ ऐड हो जाए, तो भाई ये एंटीबैक्टीरियल भी बन जाता है। तो जनाब खुदा की हर एक नेमत लाजवाल है, अल्लाह ताला ने जो नेमतें पैदा की है, बस इंसान के अंदर सोच बूझ होनी चाहिए कि उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। पुराने वक्तों में बहुत मुश्किल तरीके होते थे, जाफरान को इस्तेमाल करने का तरीका बहुत मुश्किल होता था, इसी तरीके से संदल को इस्तेमाल करने का बहुत तरीका मुख्तलिफ होता था हल्दी को, लेकिन केसन ने सब कुछ आसान कर दिया आप लोगों के लिए। ये कुदरती नेमतें जो आपकी स्किन को, आपकी खूबसूरती को निखार सकती हैं बहुत ही आसान तरीके से, क्रीम और साबन की सूरत में आप लोगों के पास मौजूद है, इस्तेमाल कीजिए और उन लोगों में शामिल हो जाइए जनाब जिनके पास होता है कुदरती निखार। कॉलर हमारे साथ मौजूद है 03449 3633 6 पर, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
1: लाला खलील की हाल
0: है? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। कौन इन सर नाल नाल से स्वप्न सिंह? जाहिद भाई लाड़ा को लेने पे पहाड़पुर एफएम को सुनते पे वे
1: जी आजा पहाड़पुर एफएम फीमेल है ना?
0: फीमेल है जी जी
1: जी हाँ। उस दा ना हर वेले दर्द रहा जिस हमें दर्द रहा दवाइयां ते उन्हों काल कर थके खड़े ना।
0: अच्छा ठीक है,
1: ते उसको ताकत प्लस दे उनको फायदा देसी।
0: ओ इवे फायदा देसी जिवे तो को मैं क्या खां, बस 5 दिन उनको को पिलाओ सिर्फ ताकत प्लस, ठीक है सही। ते बल्कि एक रात पीसे या दो रात या दो त्रै गिलास दूध दे जरी ने बढ़ा के पीसे ना ताकत प्लस देना, तो पहली बार जिस्म में दर्द खत्म थी वैसी, ठीक है सही।
1: ओ लाला ओ आता है मेरे मेरे बाहें दर्द रहा ना सारी दीवार ना।
0: अच्छा जी, कम करे दो से ना सारे दिवार, रोटियां पकावना, झाड़ू देवना, बर्तन धोवना है जी, ये सारे काम घरेलू मसले तो बिल्कुल सही। उनको वन के कोई करीबी तो उनको वन के गिफ्ट गिनवा के दे दो, या उनको वन के दसो चा ताकत प्लस तो रंगपुर अड्डे ते हसीब जनरल स्टोर हैदर मेडिकल इन दुकाना ते मिल वैसी, ते थोड़ा जे दूध को गर्म करके नीम गर्म करके इस्तेमाल करे सो तो इनशाला पहली दीवार को जिसम दे दर्द हड्डियां दे दर्द खत्म थी वैसे बिल्कुल।
1: ठीक है
0: जी, ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया जनाब। लाड से हमारे साथ है जाहिद भाई और पूछ रहे हैं जी जनाब, ये जो खवातीन काम करती हैं आपको पता है शरीयत के अंदर आप इनसे काम नहीं करवा सकते, शरीयत आपको कभी नहीं कहती है कि औरत से कपड़े धुलवाएं, औरत से जो है झाड़ू दिलवाएं, औरत से जो है खाने पकवाएं, ये नहीं है। आप यकीन कीजिए किसी आलम से जाके पता कीजिएगा, ये तो हमारी रिवायत बन गई है ना, रिवायत बन गई है कि खाना भी औरत ने बनाना है, कपड़े भी स्त्री भी, सारा कुछ नहीं करना है। तो ये भाई क्यामत के दिन तो बड़ा अजर मिलेगा, ये इनका हक नहीं है इस तरह के काम करना, लेकिन ये करके देती है क्योंकि हमारे मुआशरे का हिस्सा है ना। टांक वाले सुन रहे होंगे, भाई ये कौन सी बात कर रहे हो जी। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम खलील भाई, क्या हाल है जी, सर खैरियत है
0: जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है जी। सर नाल मुलाजिम परदेसी दुकानदार
1: जी? जी मैं रावल तो बाल करें ना, अपने मुलाजिम दुकानदार परदेसी सोहेल मदरसे के नाम मेरी दुकान है
0: जी। जाफरानी साबन तुहाडे कोल सी जांदे ते जाफरान संदल ते हल्दी बड़ी पई है, पीए तुहाडे कोल तुहाडी दुकान ते?
1: बिलकुल बिलकुल, साबन काली बंदा गिन गया मेरे कोल दे मुंह ते दाने आन मैं ते इंशाल्लाह गिन मजो।
0: बिल्कुल चार टाइम का मतलब चार दीवाना अगर ताकत प्लस को इस्तेमाल करें जिसम के दर्द सारे बिलकुल फुल बेटा फुल खत्म।
1: बिल्कुल
0: मैं तो आपे अमरीदी ताकत प्लस ना बिलकुल
1: बिलकुल बिलकुल इंशाल्लाह
0: शुगर काम नहीं करना शुगर शुगर मिठास है ना चीनी मौजूद है लेकिन इनशाला तुसा बस सिर्फ एक हफ्ता भी देसो चा एक हफ्ते दे अंदर अंदर शुगर फ्री ताकत प्लस ही तो देने पे इनशाला ते वदा पैक महीने वाला भी तो इनशाला देने पे ठीक है सही।
1: शुगर शुगर फ्री आवे ना वा तो अस आपे भी बहु वत इस्तेमाल करे सुरा
0: में ना शुगर फ्री भी आया सही बस अस हुकम दे देते से ऑर्डर गए पेन कि शुगर फ्री बनाओ भाई। शुगर फ्री वाले ज्यादा कमजोर लोग होने उन्हें को ज्यादा ताकत प्लस दी जरूरत है तो जरूर सही इंशाल्लाह जिन्हें कंट्रोल शुगर है उसको इस्तेमाल करे से कंट्रोल का मतलब है कि 160 170 180 तक वधी तक तकरीबन बस इवें समझो कि वैसे तो नॉर्मल 115 120 तक होनी है लेकिन 150 160 वाला जल्दी ताकत प्लस को यूज करे से इंशाल्लाह बहुत सारा फायदा मिलसी। ठीक हो गया जनाब शैम्पू सही तरीके ते इस्तेमाल नहीं किया जेरी द्वारी ना कुछ समझ आ गई ना कि भाई ये कितना मियारी शैम्पू है ये कितने दिवहारा चलता है। मैं तो दसना की इतनी देर तक क्यों चलता है यानी कि तुसा इस्तेमाल करो रहा बाकी शैम्पू खत्म थी वे लेकिन चलता रहा है क्यों चलता रहा है केरी शह है तो मैं दसना कॉल के बाद बहुत मेहरबानी सही शुक्रिया नुमान शेख को सलाम आग दे पैर जनाब
2: सिर रख के यार दे कदमा विच सिर्फ
0: हां जी।

0: जनाब केसन शैम्पू में बहुत सारी खूबियां हैं, बालों को सिल्की करता है, बालों को स्ट्रेट करता है, चमक भी लेके आता है, लेकिन एक बात ये इसकी ये है कि अगर आप ऑयल लगा के अपने बालों को धोते हैं तो बाद शैम्पू से दो दफा आपको बाल धोने पड़ते हैं, लेकिन इसको एक ही दफा जब लगाएंगे तो आपका ऑयल सारा निकल जाएगा। यानी कि इतना कोई मियारी फार्मूला है यार। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: तो साहब क्या हाल है? ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि भाई दूसरे शैम्पूओं से हमारे वाला शैम्पू ज्यादा दिन चलता है, गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं?
1: वो बिल्कुल सही है, इसलिए चलता है। एक तो इसका इसमें जो घाटपन आया ना, इसमें मिलावट ज्यादा, इसमें यानी कि ये गाढ़ा बहुत है।
0: गाढ़ा बहुत है, ठीक हो गया।
1: थोड़ा सा ही लेकर यूज करें ना, ये थोड़ा सा ना सारे बालों में ना बिल्कुल मिक्स हो जाता है, इसमें झाग ज्यादा हो जाते हैं। दूसरा तेल लगता है ना, तेल इसकी सफाई कर देता है बालों की भी, फिर ऊपर से शैम्पू लग जाता है, शैम्पू की वजह से ना और बालों में चमक और सिलक आ जाती है। दूसरा है ना शैम्पू इसलिए ज्यादा चल रहा है, ये गाढ़ा बहुत है और इसमें है ना कोई ऐसा पानी वाला या वो नहीं है, जब इसमें है ना आधा वो इसमें एक पानी हो या कोई केमिकल हो।
0: हाँ, असल बात बहुत सारी कंपनियां ये शैम्पू बनाती है ना, इसको गाढ़ा करने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल होता है ना वो झाग को खत्म कर देते हैं। अगर आप असल चीजें ना डालें और सिर्फ गाढ़ा करें, बात होती है गाढ़ापन और असल, यानी कि कुछ इस तरह करते हैं कि भाई सिर्फ गाढ़ा करते हैं, गाढ़ा करने के लिए केमिकल इस्तेमाल होता है, वो झाग पैदा नहीं करता। हम सर्फेक्टेंट्स की तादाद इतनी ज्यादा डालते हैं कि जनाब इसमें नमक की तादाद मिकदार ना होने के बराबर होगी, नमक इस्तेमाल होता है गाढ़ा करने के लिए। लेकिन आप हमारे शैम्पू को कभी आप ट्राई करें, आप आंखें खोल के भी धोएंगे ना तो आपकी आंखों में नहीं जाएगा, क्योंकि ये साल्ट फ्री होता है। ठीक है जनाब, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं जो लगा रहे हैं। भाई ऐसे ब्रांड नहीं बन गया है आपके पहाड़पुर वाले, आप कार्टनों से नीचे बात नहीं करते हैं, वो पता करें ना जीशान भाई से, यासीन भाई से, चौधरी यासीन से, ठीक है? वो आपका चौधरी नवीद बैठा है, उसे पूछें भाई कितना ऑर्डर करते हैं, वो हर वक्त कहते हैं दो कार्टन, तीन कार्टन, चार कार्टनों से नीचे बात नहीं है केसन शैम्पू की, कि लोगों को समझ आ गई है कि भाई ये तो कम लगता है आपके ये। कल मुझे आप टांग से एक बंदे ने कॉल की हुई थी, वो कह रहे थे कि भाई पहले हम एक और कंपनी का इस्तेमाल करते थे, 15 दिन में खत्म हो जाता था, ये तो इतना लंबा चलता है, वजह क्या है? मैंने कहा भाई म्यारिश है, ओरिजिनल चीज है, क्यों नहीं चलेगी, ज्यादा झाग ज्यादा बनाएंगे।
1: नहीं खलील भाई, ये बिल्कुल तुम्हारी बात बिल्कुल 100% सही है, इसमें कोई केमिकल या कोई ऐसी चीज मिक्स नहीं है, ओरिजिनल चीज की मियार भी ज्यादा होती है और अच्छी भी होती है।
0: तो मैं सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये हमारे अंकल आरिफ जो है चौधरी साहब हैं, हमारे पहाड़पुर से इनका ताल्लुक है और हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो आप नंबर वन बोलेंगे केसन शैम्पू को या हिचकिचाएंगे थोड़ा सा?
1: नहीं नहीं, क्यों इस चीज खाएंगे, अल्लाह के बंदे नंबर वन क्या, नंबर वन से भी ऊपर है, यकीन करो इसमें छिक छिकाने की कोई बात नहीं है। मैंने पहली फुर्सत में आपके एक बात बोली है, मैं बोलता आ रहा हूँ कि दो नंबर चीज होती है खलील भाई, मैं आपको FM के अंदर ही मैं तुम्हें कहता कि यार ये चीजें बंद कर दो,
0: बंद करो FM बंद करो यार, दो नंबर चीजें बेच रहे हो।
1: नहीं नहीं, मैं तुम्हें अब गलूटा वाइट है ना, जो आपका फेस वॉश है ना खुदा की, यकीन करो मैं उसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, यकीन करो आज 2 महीने हो गए जो अभी तक भी चल रहा है,
0: अच्छी चीजें, मक्की के सर के बराबर भी हमारा फेस वॉश निकालेंगे ना वो जबरदस्त झाग करेगा। बाकी
1: मेरे मुंह पे एलर्जी हो जाती थी, यकीन करो मैं उससे बिल्कुल मुतमिन हो गया हूँ और मेरी एलर्जी भी खत्म हो गई।

0: सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रोडक्ट है केसल शैम्पू। इसकी जब आप यूज करेंगे तो आप इसको कभी छोड़ नहीं पाएंगे, दावा मैं करता हूँ। कोई छोड़ के दिखाएगा मैं उसको इनाम दूंगा जो एक दफा केसल शैम्पू खरीदेगा। बहन भाई बुजुर्ग जो भी, एक दफा हमारा शैम्पू खरीदने, इसके अंदर नशा है, इसके अंदर नशा है, ऐसा नशा है कि ये कभी उतरेगा नहीं। आप एक दफा यूज करेंगे, एक दफा यूज करेंगे, बार बार इसको लगाएंगे, क्योंकि वो सारी खूबियां आपको देता है जो कि एक मियारी शैम्पू देता है। बहुत कम शैम्पू से आपके बाल साफ हो जाते हैं, सिल्की हो जाते हैं, चमकदार हो जाते हैं, शाइन आ जाती है, बालों को सीधा करता है। जी जनाब, एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
1: जनाब खैरियत है?
0: जनाब ठीक ठाक। हमारे नाल कौन मौजूद इन? चाचा अमानुल्ला राही
1: जी, गुलजार अहमद अजीजुल्लाह खुरम जामर खान मदनी टाउन को।
0: मदनी टाउन को चाचा, किवे हाल है? ठीक ठाक है तुसा?
1: अल्लाह की मेहरबानी है, तेरा कुरान सुन लेते हैं, मुंह अच्छा लगता है।
0: चलो जी माशाल्लाह।
1: रोजमर्रा
0: इस्तेमाल दिन ठीक है, इस्तेमाल ही करे बंदा गल, जो बंदा इस्तेमाल करें तो दिल को आवाज निकलती है कि यार वाकई कंपनी तो एक नंबर है, तो शह भी एक नंबर बनती है। जनाब जी बिल्कुल, चाचा मानुल्ला राइस चैनल मौजूद हैं। बहुत अरसे बाद इनकी कॉल आई थी मेरे शो में और मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि ये बुजुर्ग हैं और एफएम की दुनिया में या रेडियो की दुनिया में चाचा मानुल्ला राइस का नाम जो है वो हर जगह गूंजता है, हर प्रोग्राम की क्या कहते हैं इज्जत होते हैं, शान होते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, इनके लिए मैंने गिफ्ट अनाउंस किया था, ये फिर आए और हमने इनको गिफ्ट से नवाजा और इनको पसंद भी आया क्योंकि इस्तेमाल की चीजें हमारी होती हैं, रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें हैं, साबुन हैं, फेस वॉशेज हैं, शैम्पू हैं, हेयर ऑयल हैं, परफ्यूम है, ठीक है जनाब, इसके अलावा क्रीमें वगैरह हैं। तो बात हम कर रहे थे आज किस चीज की बात करें, जफरानी फार्मूला क्रीम है हमारी या जफरानी साबुन है, दोनों बहुत ही कमाल के हैं और आप जहां पर भी मौजूद हैं एक दफा हमारी ये क्रीम जरूर ट्राई कीजिएगा। वैसे हमारी और क्रीमें अभी आने वाली हैं ठीक है जनाब, और लेकिन जफरानी क्रीम उसका एक अपना कस्टमर है ठीक है जनाब, उसका एक अपना गाग है और वो कभी छोड़ता नहीं है जफरानी को। जिसको जफरान की लत लग जाती है ना, जिसको जफरान का मजा आ जाता है, उसे समझ आ जाती है कि जफरान है क्या बला, जफरान से मेरे चेहरे के ऊपर कितनी बड़ी तब्दीली आई है, झुर्रियों को खत्म करता है। और जफरान की जो चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ना, बहुत ज्यादा जो पसंद है दो चीजें इसकी, जफरान बिजात खुद एक एक क्या कहते हैं एक स्पाइस है, एक मिसाला है, लेकिन जब आप स्किन के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, स्किन के लिए जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो हैरान कुन तौर पर ये आपकी स्किन को गोरा करता है, हैरान कुन तौर पर ये आपकी झुर्रियों को खत्म करता है और हैरान कुन तौर पर आपकी स्किन को स्मूथ करता है, चमकदार बनाता है। यही वजह है कि हमने एक अरसा दराज से आप लोगों के लिए ये प्रोडक्ट तैयार की हुई है, साबुन और क्रीम दोनों में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, हाल है खलील भैया
0: जी? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। कौन इन सारे नाल नान से अपना?
1: ये कुरैशी मोड़ तो।
0: अच्छा कुरैशी मोड़ को, ठीक है। यास्मीन बहन सर नाल इन?
1: जी जी याद कर रहे हैं ना?
0: हाँ याद बिल्कुल। आज पता है सारी मुलाकात इब्राहिम भाई नाल थी है, जने तो सोच
1: रहा कल कल मैं मिल नहीं रही हूं तो नहीं मिल रही हूं, सवेल दिन मिल रही हूं तो नहीं मिल रही, मसे को ओखा दे वो कल मिल रही है
0: ना, ओखा दे कल मिल रही था, जोर बहु लावना पौने सारे शोध भी क्योंकि त्रै शहर होने ना टांक वाले कोशिश करें दे पैन डेरे वाले भी ते नाल पहाड़ पूरा वाले भी, तो जरूरी गल है कि थोड़ी जी बंदे को थी नहीं, तो मैं के आज तोरा गिला
1: जी, मैं के सारे को गल पूछ दियो से
0: जी जी हुक्म
1: जी, मैं होता का प्लस इस्तेमाल करने नहीं पे मेरी बहन से उन्हें जिसमें में दार से पठा छोड़ा ना हर टाइम ते जी ओवर तो पक्की डेट का पेट का मत उन्हें बहुत दवाइयां की क्या नहीं सुना, दर्द ज्यादा उन्हें सो तो उन्हें पेट फिट है ना, तो पहले से मैं वो कहता हूँ पक्की इस्तेमाल करना डेट का पेट का मत।
0: अच्छा जी,
1: इस्तेमाल करे प्लस मैं पजेर को कार के ओ शाम को कर मैं कबीर भयाने का पूछू।
0: तो क्या दे?

0: कि एक पेट ही काम करने पे अच्छा तो मैं मजे निकाल देता रूए कम थी क्या ताकत ही जरूरत है तो वजन नहीं कम करना है तो साकू फसा देता मैं तुसा
1: ए वो मजे निकाल
0: मैं कह तो साकू कंफ्यूज ही कर रहे थे साकू फसा देता है वे है जी ऐसा उन केरा जवाब लूं तो अच्छा इनका मुख्तसर जवाब दे रहा है ना ओ ए है कि अगर उन्हें तो पेट मुंह पहली गाल थे कि ताकत प्लस को इतना वड़ा जादू नहीं कि तुसा एक हफ्ता खा सो तो मोटे थी वैसो ठीक है जनाब ए ओ लोग जेरे एको रेगुलर यूज करे सिन 3 महीने तक इस्तेमाल करे सिन ना हेलो जी आवाज आनी पई है
1: जी जी
0: इतने जल्दी बंदा मोटा इतने जल्दी गोश्त नहीं वद्दा होंदा उंदे वास्ते कम से कम 3 को 3.5 महीने एको रेगुलर घिनना पोंदा ठीक है लेकिन जेरा तुसा मसला दे सेंदे पेवे ना जेरा मसला तुसा दे सेंदे पेवे कि उंदे जिस्म वाला दर्द बिल्कुल एक ऊना को आको कि हफ्ते दे विच 2 दफा ही को सिर्फ इस्तेमाल करें हफ्ते दे विच ताकत प्लस को सिर्फ 2 दफा इस्तेमाल करें ते वेट कम पेट कम को जेरा ना ओ डेली इस्तेमाल करें ताकत प्लस को सिर्फ हफ्ते च 2 को 3 दफा इस्तेमाल करें बस ज्यादा ना करें
1: रोजाना
0: नहीं रोजाना नहीं यानी कि पहली गल तो है कि सर जेरी वेट कम पेट कम है ना उंदी विच जेरी जड़ी बूटियां हैं ओ वे जिस्म को बड़ा हल्का कर देने ते उंदे नाल ही बड़ा फायदा थी वेंदा लेकिन अगर वो भी आ देन के जिस्म दे दर्द खत्म थी वेन तो उन को कि एक बार छोड़ के ताकत प्लस पी वेन ते नाल अपने जी वेट कम पेट कम है उको अपने रूटीन जारी रखे बस ठीक है तुसा मैं तो गॉल करना पियाने के तुसा उनको आग दियो कि भई ओ वेट कम पेट कम को डेली इस्तेमाल करें एक हफ्ते 2 दफा इस्तेमाल करें 2 दफा इस्तेमाल करन ने बहुत सारा उना दे जिस्म दे फर्क आवे से दर्द वगैरह खत्म थी वैसे इंशाल्लाह अच्छा बस इंशाल्लाह उम्मीद है आज भी उन्होंने ऑर्डर है सारे को लेकिन आज भी ऐसा उन्हें कुछ रहना नहीं पहुंचा सके इंशाल्लाह इतवार ते तुसा पता करे सो था जरूर आया पियो असी शिफा दर्द मिल वैसे तो
1: जफरानी
0: पहुंच गए जफरानी साबान पहुंचा पिया लेकिन सिर्फ शिफा दर्द की कमी हो जिम्मे आंदा इंशाल्लाह इतवार से पता करे सो इंशाल्लाह उन्होंने को पहुंच गया ठीक ठीक है जी बहुत मेहरबानी
1: और ए मैं कह मेरा बेटा हो लगा के वो आदे अम्मी तू पता करे जमीन की सामान मैं मुंह धो
0: हां बिल्कुल धो से दे सेफ तरीन साबुन हाँ। सारा तू सा 2 महीने दे बाल को इन मुंह धो इतना सेफ है
1: जी जी धो ना ते फिर रोजाना
0: बस 2 दिया मैं दा के 2 महीना दा अगर बच्चा है ना तुसा उंदा मुंह भी केसन मिल्की साबुन नाल धोवा सकदे वे दूध त बड़ा है साबुन है ते ओका खुशकी नहीं करदा जिवें हुन अगु सर्दी आंदी पई है ते मुंह खुश थी सन ता इना रिवारा ते केसन साबुन ही हर जाते चल देन क्योंकि जनाब ओ खुशकी नहीं करंदे कोकोनट ऑयल नाल बणे होंदे
1: इस्तेमाल करें ते
0: हां बस इस्तेमाल करो ते इंशाल्लाह बहुत सारे फायदे भी हासिल करो
1: ओ बा केसन साबुन ते शैम्पू ते हेयर ऑयल ते बस ओ एडा दीवाना किया करे
0: केसन दे बिल्कुल बस केसन दे प्रोडक्ट जेले फायदा दे सन दवा हर कोई दीवाना बन दे बहुत मेहरबानी तुम्हारी कॉल की थी तो मेहरबानी शुक्रिया जी जनाब बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज और आप लोग भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब हमारा नंबर आप लोगों के पास मौजूद है जिसके ऊपर आप लोग कॉल करते हैं 03449363366 03449363366 जी हमारा नंबर है जनाब जिसके ऊपर आप लोग SMS और कॉल करते हैं जी एक और कॉलर हमारे साथ है अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम सर खलील खान
0: मेंबर शाहजहां सर नल मौजूद इन सही की में हाल है चंगे वदे वे
2: शुक्र है सर अल्हम्दुलिल्लाह ये भेण को आग शिफा दर्द नाल इस्तेमाल करो
0: अच्छा नहीं जिस्म दे दर्द हुन पूरे जिस्म दे मालिश करना बाद लोगों का मसला होना है ना लेकिन अगर कोई मुख्तसर जा होवे जी में मतलब है कि
2: ना सर जी में गाल नन करने पे पठा ना
0: हां
2: मेरे पट्टे को दर्द हो उसे पट्टे से दे दो तुमसे जात शिफा दर्द लावे सिर्फ
0: वो तो सर फौरी क्विक रिजल्ट इमरजेंसी है जी
2: बिल्कुल इमरजेंसी रिजल्ट पे दस्ती
0: रिजल्ट मिल देन बिल्कुल देखो तुसा गालियां सुनदे पे आंदे तो बाजो का तजर है ना तुसी उंदा जवाब दे गिंदे वे तो सारी बहन सुनदे पे उसन कुरैशी मोड कोल भाई शिफा दर्द तो मंगदे वदन मिलदा नहीं पियो ना को मसला नहीं बस सारे को थोड़ी जी शॉर्टेज है उनकी ठीक शह होंगी और सारे को मिसिंग है वो इंशाल्लाह कल परसों पहुंच वैसी विंटर ग्रीन ऑयल खुदी शामिल थी ना तो इंशाल्लाह बाद लोगों तक पहुंच वैसी
2: करो सारे
0: اصل کوئی کمپنی بھی نہیں چاہتی کہ ان شہیاں شارٹ ہوئے، لیکن تو میں گال کرنا کہ ہوں سارا اسٹیشن ماشاءاللہ ہر جہاں تے ٹانگ ڈیرا پہاڑ پور وات اتنے سارے پروڈکٹ، سارے کتنے زیادہ پروڈکٹ ہیں، ٹھیک ہے سہی، سات قسم کے صابن، چار قسم کے فیس واش، چار قسم کے کریما، ایک ہی پروڈکٹ کو برابر کرنا نا وہ بات تھوڑا جا پرابلمیٹک ہوندا ہے، تو تھوڑا موسا نہ تو گزارا کیتا کرو، اگر ایک چار دو چار دیاں دی شارٹیج آ ویندی ہے تو سن تھوڑا جا تاون کیتا کرو، ٹھیک ہے؟
2: بالکل سر، انشاءاللہ کار سنن والا کو سلام سارے دراج غفور کو اسپیشل سلام،
0: اچھا جی دو ہتر سلام،
2: دو ہتر سلام خلیل خان کو، دو ہتر سلام،
0: چلو ٹھیک ہے جی، بہت مہربانی جناب، شکریہ جی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں،
3: صرف پھر اٹھا
0: جی سید الرحمان کوٹ دولت سے بھی آپ ہمیں سن رہے ہیں کیا؟

0: जी जनाब एक और कॉलर है, आप लोगों के मैसेजेस भी मेरे पास मौजूद हैं, तो जनाब देखते हैं कि कौन है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, थोड़ा खलील बिरा
0: जनाब, क्या हाल है जी? ठीक ठाक। कौन इन सारे नाल अपना नाम से सो
1: कोट अला दात शुएब
0: शुएब कोट अला दात को शुएब भाई किवे हाल है?
1: खैर शुक्र है, तू सुना बिरा
0: प्रोग्राम सुन दे पे वे सही
1: प्रोग्राम सुन दे पे
0: आज टांकलां को वारी नहीं मिलदी पे पता होवे तो आज पहाड़ पूरा ले डाटे थे कने टांकलां ते
1: बस तुम्हारी मजला सुन दे बाते बड़ी मजा की थी पई है।
0: अच्छा
1: या
0: सारी मजलिस विच आज दर्द दे गालियां थीने पैन ते ऐसा दर्द जेरा खत्म न थींदा होवे ना सिर्फ मैं तारीफ करना बैठना बल्कि सारे वेचण वाले भी तारीफ करंदे बैठे हैं ते गिनण वाले भी तारीफ करंदे बैठे हैं। तो कोई तई शायद ही जरूरत को नहीं सारे शिफाए दर्द दी
1: ताकत प्लस जिंदाबाद।
0: अच्छा जी पीती खड़े हुए ताकत प्लस
1: इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह।
0: की में मजा की थी पे चस दी पी है
1: बहु मजा की थी तय के वाला जुआर कार है
0: शाही में बड़े से सही शाही में सारी ताकत प्लस की जेरा घिंद है ना बाबा तो इंदे गुन गांदा उको लग दे कि उंदी जान इसको भाई जान वड़ गई है।
1: जी हां इंशाल्लाह पहलवानी तो तैयार है
0: पहलवानी तो तैयार इमे ताकत वाले अंदर से टेसी की कमजोरी भी खत्म ते चक्कर आवना भी खत्म ते ताकतवर मर्द दिवे या औरत दिवे ताकत प्लस को बस इस्तेमाल करो ते बात इंदे जादू देखो के तो को कीवे जवान करेंदे वाला के ते कीवे तोडे अंदर एनर्जी और कमजोरियां शमजोरियां ले दौर गए खत्म थी गयो।
1: जी हां बा धर्म दूध पीते खड़े हैं।
0: अच्छा बाद कोई बीच मेवा शेवा भी आंदा पिए या सिर्फ दूध पीने के कोई मेवा शेवा आए होने तक कोई बादाम अखरोट पिस्ता या किशमिश कुछ आई है तो अरे मुंह बीच पींदे लेंगे।
1: जी हां बहुत शंगा इन दे बीच इस्तेमाल
0: है हाय हाय हाय यानी कि तुसे दीवाने बन गए वे सारे ताकत प्लस दे
1: दीवाने दीवाने बिल्कुल
0: क्या सो टांकला को क्या सो सरे की बिरामा को केरा पैगाम दे सो अपनी तरफों
1: ताकत प्लस इंशाल्लाह इस्तेमाल करें
0: सियातिज बराबर होते एक दफा गिनो खर्चा करो अपने उते खर्चा हो सी तो बात चर्चा हो सी इवें याद देना सही
1: चर्चा हो सी बिल्कुल।
0: शोएब भाई बहुत मेहरबानी तुम्हारी बहुत शुक्रिया सर नाल आवे मजा आया ते सारे ना सिर्फ ताकत प्लस को भाई शैम्पू तो सारा ट्राई करो तुसा सारा तेल तो ला के देखो सारे साबन तो इस्तेमाल करके देखो भाई कोई बैशा गिनसो नहीं तुसा जेले केसन दे प्रोडक्ट आसो केसन जाफरानी साबन केसन मिल्की साबन केसन राइस शाइन साबन केसन चुकंदर वाला साबन केसन कितने साबन मैं को आप ही भूल बैठे नहीं यार कोई कंपनी सात सात साबन ही बने दी है यार है जी इतनी बड़ी कंपनी जरे तो आपको सात सात किस्म के साबन। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम लाला जी।
0: जनाब सादिक संजरानी
2: जी
0: मेरा नंबर सोखा मिल गया जांगलियां लुक देखने पहले मैं कोई डर सोचा
2: नहीं मैं जरा दिल मिले जांगली नहीं लुक जा
0: दिल मिलाओ तो नंबर फौरन लग रहा है ठीक ठाक
2: ठीक करे जी मेरे को चक्कर तू गाल याद आ गई मैं कॉल करे बंदे हैं तेरे ताकत प्लस तकरीबन महीना थी ना पे इस्तेमाल करें देखने वो मिसाल है
0: चक्कर थोड़े मारे करो बहुत ज्यादा टुरे न करो ठीक है चक्कर तो उंगले आने ना जले बंदा बहुत ज्यादा जेंदी कसरत बहुत ज्यादा होवे ना ठीक है सही ता एक महीना अगर ठीक है तो एक महीने तो सही बहुत सारे रिजल्ट आवे ने भाई अल्लाह दा नाम ने चक्कर वक्कर ता साथे दो दिन विच खत्म थी वेने चक्कर मक्कर जे आने ना
2: पहले दे वही ने हां ना रंग दे कमजोर हैं छोड़ देते चलो भाई ताकत इस्तेमाल करो ये शायद ताकत दीजिए ते चलो मैं को
0: जारी रखो कमजोरी बे इंतहा दर्जे दी होसी तो वरना था दो चार दिन कमजोरी दी वजह चक्कर आने होवन तो ओ भाई त्रे दिन बाद डंडा होता जिवें तुहाडे कोल पहले बंदा कॉल की थी पिया उन्हें क्या कहा भाई जवान कर सटे सकू ताकत
2: खुद पता है तारीफ करे नहीं।
0: हाँ बिल्कुल ता उन्हों को थोड़ा जे मजीद ही गुजारी रखो ठीक है इंशाल्लाह सारे मसले तुम्हारे बिल्कुल यकमुश खत्म थी वैसे ठीक है बेरा تھوڑے جی صبر کرے سو بھی صبر کروں ہیں جی تھوڑے میسج کو سن گن دیا جناب کون کون سارے کتوں کتوں موجود ہیں جی شاہجہان عمر والی پنجاب عمر والی سے ہمارے ساتھ ہیں سلام کہہ رہے ہیں جی بہت شکریہ

जी जनाब, कैसे हो भाई? मैं हमजा बलोच हूँ, कुराई से। जाफरानी सोप ऐसे रूटीन में यूज करें जिस तरह दूसरे सोप को यूज करते हो। हाय हाय हाय हाय, जाफरानी साबुन का मजा जिसने चख लिया ना, फिर वो यही बात करेगा। बिल्कुल, किसने कहा है आपको कि जाफरानी को सिर्फ कंडीशन में इस्तेमाल करना चाहिए? भाई ये ब्यूटी साबुन है, ब्यूटी सोप है, फेस सोप है, तो आप इसको हर रोज इस्तेमाल कर सकते हैं, हर रोज। अस्सलाम वालेकुम, आई एम जखड़। बड़ा अजीब नाम है यार। कैसा आपका पुगाम? अच्छा है जी। सब सुनने वाले को सलाम वालेकुम।

जी जनाब अस्सलाम वालेकुम, आई एम रईस खान खलील भाई। कैसे हो खलील भाई? बिल्कुल ठीक है। और कैसे हो? कल मैंने केसन ताकत प्लस फार्मूला महमूद जनरल स्टोर CRBC से खरीदा है और हमारे मदरसे के कुक हैं उन्होंने उनको दिया है। वो डेली आपका शो सुनते हैं, फिर आपको रिजल्ट बताऊंगा इस्तेमाल के बाद। लास्ट में इश्वाक भाई को सलाम।

जी जनाब रईस भाई, ताकत प्लस आपके इलाके सीआरबीसी में जनरल स्टोर के ऊपर मौजूद है, जाहिद शॉपिंग सेंटर पे और मजार वाली जो गली है डेर इस्माइल खान में वहां पर भी दस्तियाब है। और आप जरूर अपने कुक जिन्होंने मंगवाया है इंशाल्लाह वो बताएंगे कि जनाब जब दो तीन दिन इस्तेमाल कर लेंगे, वैसे तो पहले दिन ही आपको समझ आ जाती है कि ये प्रोडक्ट कितनी जानदार है और आपके जिस्म को किस तरीके से जनाब ये एनर्जी से और ताकत से भर देती है। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम, बैटरी एंड सोलर सिस्टम दबरा बाजार, केसन के प्रोडक्ट मिल जाएंगे? अच्छा जी मिल जाएंगे केसन के सारे प्रोडक्ट भाई। इब्राहिम भाई डबरा में सोलर बैटरी वाले भाई, इब्राहिम भाई की दुकान के ऊपर जाइएगा, ठीक है जनाब। इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो है शेख उतार रोड के ऊपर, जी जनाब शेख उतार रोड के ऊपर जो है जिया जनरल स्टोर है, आप वहां पर भी केसन के प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं डाक में।

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم ریڈیو کی لہروں پر بکھرتی ہوئی میری آواز ہر دھڑکتے دل تک پہنچے. السلام علیکم, السلام علیکم اینڈ السلام علیکم. خواتین و حضرات, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کے ساتھ. صحت کا پیغام لے کر آپ کا میزبان آر چے انسختر آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوا چاہتا ہے. امید کرتا ہوں آپ تمام سننے والے جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے اور صحت والی زندگی گزار رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے, ہنستا رکھے, مسکراتا رکھے اور صحت والی زندگی عطا فرمائے. خواتین و حضرات, صحت کا پیغام جو کہ روزانہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک بالکل لائیو اور براہ راست ہوتا ہے, جس میں حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ آن ایئر اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور جو ہمارے سامعین کے سوالات ہوتے ہیں صحت کے حوالے سے ان کے جوابات دیا کرتے ہیں. سو سامعین, اگر آپ کا بھی آج کوئی صحت کے حوالے سے سوال ہے, آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال ہے آپ محترم حکیم صاحب سے اس لائیو شو میں پوچھنا چاہتے ہیں, تو بالکل آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر, 7-0963-511-488 پر. سو بالکل خواتین و حضرات بالکل لائیو ہیں, براہ راست آج کا پروگرام ہے. اس وقت میری اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق ٹائم ہو چاہتا ہے 7:06. سو جناب, آپ مجھے جہاں سے بھی سن رہے ہیں, چاہے ٹانگ سے ہے, چاہے وزیرستان سے ہے, جہاں تک بھی میری آواز آ رہی ہے, الشفا دواخانہ کل سارا دن کھلا ہوگا, صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب موجود ہوں گے الشفا دواخانہ میں. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی. سو بالکل جناب, آج جمعرات کا دن ہے اور بالکل لائیو اور براہ راست آپ ہمارا شو سن رہے ہیں, اور انشاءاللہ کل حکیم صاحب اپنے کلینک پر موجود ہوں گے اور مریضوں کا جو چیک اپ آئینہ ہے وہ بھی جاری رہے گا. سو بالکل جناب, چسمرہ ہم بختنا زمنگ دا پروگرام عربی ساس ٹولو تدا صحت پیغام کے ہر کھلے ہمایا مگرانو عربدن کو کساسو ہم دا چیری صحت حوالے سر سوال بھی ساسو حکیم سے اپنا پتا قبل گوار. بالکل جناب, ساسو منگ سر رابطہ قبل سو پدی پروگرام کے پسیفر 319-55-23-404 باندے, اور دین علاوہ جناب کساسو چیری صحت حوالے سر دا سی مسئلہ بھی چی جیسیاتی لا جرم ورت کھڑی بھی اور چکم ساسو مسئلہ دا آنا حل کیے جی. ابل کے جناب ساسو خپل شہر ٹانگ کے دا اسلام آباد یو میناز او تجربکار حکیم اخبل خدمات ورکے بھی حکیم سید مشکور احمد شاہ سے روزانہ پخپل کلینک بندے موجود بھی, اور روزانہ بندے سبا بہم پخپل کلینک بندے پہ موجود بھی سبا ملاٹ بجن والا دا مقام سلور بجو پورے اور مریضوں نے چیک اپ معائنہ بجاری ساتھی. سو بالکل گران آرویدن کو کساسو ہم چیرے دا صحت والے سردا سے مسئلے بھی چٹی زیادہ جنوب عمر تک کڑی بھی پہلا جنوب بند استڑی ساسو. اور بالکل جناب, ان شاء اللہ ساسو ہر قسم بیماری علاج موجود دے پل شفا دواخانے باندھے حکیم سید مشکور احمد شاہ سے عبدالتا موجود بھی اور مریضوں نے چیک اپ آئینہ جاری ساتھی. سو بالکل جناب, جتنے میرے سرے کی بھیڑیا بھرا میں سننے پہ تو آپ میں پروگرام ویلکم آدھا جناب صحت دا پیغام تو سننے پہ وے جڑا کہ الشفا دواخانہ دے خصوصی تعاون والی خدمت روزانہ 7 بجے کل 4 کے 8 بجے تک پیش کرے نے. تو بالکل اج میرا دنی ہے پیا تے سارا پروگرام بالکل لائف تے براہ راست سننے پہ وے. امید کرے نا اج دنی تھوڑا اچھا گزرو. جناب صحت دا پیغام ہے جڑے گال کیتی میں دی تواری صحت دی, کوئی ایسی بھیڑ ہے, کوئی ایسا بھرا ہے, کوئی ایسا بال ہے جنہیں ای میں مسئلہ ہے پیا جنہیں تو سب زیادہ علاج کرایا ہوئے تو علاج کرا کرا کے تھک گئے ہوئے مایوس تھی چکے ہوئے تو ہوں ایک ایسے معالے کی تلاشی چی ہوئے جہاں تو مسئلہ حل تھی وجے. تو جناب جڑے ٹائم سارے علاج کو لگو الگ تھک پہ تا آخر کار جا ایک چراغ نظر آدھا ہے, ایک امید نظر آدھی ہے تو دیس طریقہ علاج ہے. تو جناب اسلام آباد راول پنڈی دے بہوی قابل تجربہ کار حکیم حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب تارے اپنے شہر ٹانگ کی اپنی خدمات سر انجام دینے پین جڈ کہ الشفا دواخانہ دی چونن الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی. سو بالکل جناب, تو کوئی بھی مسئلہ ہے پیا صحت کے حوالے کے نال کوئی ایسی بیماری ہے پی جن علاج تو سب زیادہ کرایا ہوئے تو ان کا علاج جڑا ہے نا تو کوئی فائدہ نہیں تھیا تو افاقہ نہیں تھیا تو ٹھیک نہیں تھینے پے. تو بالکل جناب تسا بالکل تشریف گھن کے آ سکتے ہوئے الشفا دواخانہ تے الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی. مزید تفصیلات و معلومات کے لیے اور لائیو شو میں کال کے لیے ایس ایم ایس کے لیے نمبرز اپنے پاس نوٹ فرمائیے 0319-55-23-404 پر, इसके अलावा जनाब 0963 511 488 पर आप कॉल कर सकती हैं पीटीसीएल नंबर पर. इसके अलावा कोई बहन है, भाई है, मैसेज पर, कॉल पर रब्ता करना चाहता है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं 0319552304 पर. चलते हैं जी सेहत के सफर को आगे बढ़ाते हैं. देसी दिप के माहिर हकीम, हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब हमारे साथ हैं स्टूडियो में. तशरीफ फरमा है. अस्सलाम वालेकुम हकीम.
1: वालेकुम अस्सलाम.
0: मोहतरम हकीम साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं.
1: अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ. आप सुनाएं अन साहब.
0: अल्लाह का शुक्र है हकीम साहब, सबकी दुआएं हैं. आप सुनाएं आज का दिन कैसा रहा हकीम साहब आपका?
1: पहले की तरह बेहतरीन और अच्छा, काफी होपफुल. उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर ही हो. बाकी इलाज मुआवजा है, बस ठीक है, चलता है. पेशेंट आते हैं मुख्तलिफ, उनकी सुनी जाती है रुदा की, और कोशिश होती है कि यार जो अपने तजर्बात में है थोड़ा बहुत जो अल्लाह ताला ने इलम दिया उसके तहत ही फिर मरीज का इलाज हो.
0: ठीक है.
1: तो बाकी पूरा करने लिए तो अल्लाह की जात है और शिफा भी अल्लाह ताला की तरफ से ही है.
0: बिल्कुल.
1: हम लोग तो सिर्फ ये है कि पैसे अगर लगाते हैं या खर्च करते हैं तो हम इलाज लेते हैं,
0: ऐसी बात,
1: लेकिन शिफा नहीं हम खरीदते. शिफा अल्लाह की तरफ से है, वो जब चाहे जहाँ से चाहे उसे जो मरीज है उसको मिल रही है.
0: ठीक है.
1: तो बाकी कोशिश यही है कि अल्लाह पाक हमें कामयाब करे और हमें इतनी तौफीक और इतना इलम दे या इतनी समझ दे कि हम उसके मुताबिक जो बेचारा परेशान हाल है,
0: ठीक है,
1: कम से कम उसको एक अच्छा मशवरा, एक उसको एक अच्छी उम्मीद और एक कोशिश की जाए कि उसका अच्छे तरीके से इलाज हो सके.
0: चले ठीक है हकीम साहब. आज का सवाल ये है कि आजकल ना लोग प्रोटीन और सेहतमंद गिजा के लिए जो है ना महंगी महंगी चीजें खरीदते हैं.
1: ऐसा ही है.
0: बेकरीज में कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स मिलते हैं मतलब के प्रोटीन के लिए.
1: बिल्कुल.
0: तो ये बताइए कि मैंने सुना है हकीम साहब कि दालें भी एक अच्छी गिजा, एक अच्छा प्रोटीन साबित होती है. तो क्या दालें तो हकीम साहब ज्यादा ही खाई जाती है होटल्स पर भी, घरों में भी?
1: बिल्कुल.
0: तो ये बताइए क्या कि अब लोग इतनी महंगी चीजें खरीद रहे हैं तो क्या दालें अगर वो खाएं तो इसमें ऐसी प्रोटीन, ऐसी गिजाइत है?
1: बिल्कुल, दालों में है. कोशिश और तरीकाकार बस थोड़ा सा आना चाहिए. बात यह है कि जो होटलों में दालें बनती हैं और जो घरों में बनती हैं इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है. दालें बिल्कुल एक रवायती कह लें, हमारे कल्चर का एक हिस्सा भी हैं और काफी यानी कह लें सदियों से भी कह सकते हैं हम कि एक अरसा दराज से इस्तेमाल भी हो रही हैं. इसमें मसूर की दाल है, मूंग की दाल है, माश्क है, चन्या है और बेशुमार दालें हैं, साबत मसर है, मूंगी साबत है. तो अब चीज यह है कि जिस्म को प्रोटीन की तो जरूरत होती है, फाइबर भी चाहिए और दीगर जो हैं अज्जा वो भी चाहिए. तो दालों में ये काफी तादाद में, काफी मिकदार में मौजूद होती है. अब चीज ये है कि दालों का सिर्फ बनाने का तरीका, खाली उसमें मुंह के जायको या चटपटे के लिए मिर्चे मिसाले ना हो, अगर हो लाइट हो, लेकिन दाल को अगर सही तरीके से बनाया जाए तो बिल्कुल वो गोश्त के नेमुल बदल है.
0: बिल्कुल ऐसी बात है.
1: और दूसरी ये कि जो लोग कम गोश्त इस्तेमाल करते हैं या बिल्कुल नहीं करते, उनके लिए दालें गोश्त का बेहतरीन मुतबादिल हैं. बाकी जहां तक है, अब ले लेते हैं हम के ज्यादातर होटलों पे भी आप देख लेंगे माश की दाल सफेद ज्यादा नजर आती है या फिर चने की दाल ज्यादा नजर आती है. अब घरों में भी अक्सर लोग पसंद करते हैं चावल या चने की दाल हो गई या चने की दाल गोश्त हो गया या चने की दाल खाली बना ली. अब चने की दाल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है. अब कई सवाल करते हैं कि यार चने की दाल में कुछ ज्यादा गजाइयत है कि जहां जाएं होटल पे जाएं या घरों में भी अक्सर देखें तो लोग चने की दाल को पसंद करते हैं. तो उसका मतलब यह है कि उसमें मुख्तलिफ विटामिन्स हैं, मुख्तलिफ मिनरल्स हैं.
0: ठीक है.
1: और दूसरा ये कि फाइबर भी उसमें काफी बड़ी तादाद में है. तो जो पेट के मामलात हैं उनमें बहुत दर्जा वो मदद करती हैं, वजूद को एक ताकत देती हैं. और दूसरा ये है कि आपकी जो तेजाबियत वगैरह है उसमें भी काफी हद तक असरअंदाज हो जाती है.
0: ऐसी बात है, बिल्कुल.
1: अब इसमें सिर्फ मकसद ये है कि दाल को अच्छे तरीके से साफ किया जाए, उसे पकाया जाए, उसमें मिसालों की भरमार ना हो, उसमें अदरक का इस्तेमाल आप ज्यादा कर सकते हैं,
0: ऐसी बात है,
1: ताकि बादीपन ना हो और वो जिस्म को ताकत दें।
0: ठीक है।
1: अब बाजे लोग हैं जिनको दाल से गैस बनती है, अफारा होता है, हवा ज्यादा खारिज होती है।
0: ठीक है।
1: तो अगर वो उसको अपनी बर्दाश्त के मुताबिक लें या उसमें बजाय इसके कि ज्यादा मिर्चे मसाले डालें, अगर वो उसमें अदरक का इस्तेमाल कर लें, या फिर दूसरा तरीका एक ये आ जाता है कि आप खुशक अदरक बाजार से लें,
0: ऐसी बात
1: जिसे हम सुंड कहते हैं,
0: ठीक हो गया,
1: आप उसको पीस के रख लें और गरम मसाले की जगह अगर आप उसको उस पे भूर लें, उसको इस्तेमाल कर लें,
0: ठीक है,
1: तो फिर वो आपको तजाबियत पैदा नहीं करती, यानी गैस पैदा नहीं होगी आपके, आपके मैदे पे बोझ नहीं होगा,
0: ठीक है,
1: आपको हजम जल्दी हो जाएगी, आपका स्टूल जो है वो बेहतरीन तरीके से रिलीज हो जाएगा।
0: ठीक है।
1: सिर्फ पकाने का तरीका कार है। अब सवाल बाजे कर देते हैं कि दालें जो हैं वो खून की कमी भी पूरी करती हैं, कि यार दालें जो खाते हैं ये खून की कमी के लिए मुफीद हैं, तो उसमें है, ये जरूर है कि दालों में आयरन मौजूद होता है।
0: ठीक है।
1: ठीक है। लेकिन आप उसे अगर चाहें तो आप एक मुतवाजन ग़िज़ा के तौर पे उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर ये समझना कि दाल से खून की कमी पूरी होगी ये दुरुस्त नहीं है। इसके साथ साथ फल हैं, गोश्त हैं, सब्जियां हैं,
0: ठीक है,
1: दीगर चीजें हैं, आप एक मुकम्मल तौर पे एक अपनी मुतवाजन खुराक रखें,
0: ठीक है,
1: तो फिर तो आप कमी पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये करना कि सारा कुछ दाल के ऊपर फेंक देना या दाल पे डिपेंड करना, तो वो सही नहीं है।
0: ठीक है।
1: अब ऐसा एक किसी शख्स को मुसलसल कमजोरी है,
0: हाँ जी,
1: चक्कर भी आते हैं, खून की कमी है, अब उनने बताया, चेक करवाया, उसे कहा गया कि खून की कमी है, कमजोरी है, इस वजह से तुम्हें चक्कर भी आते हैं,
0: ठीक है,
1: तो अब वो अगर कहे कि यार मैं ज्यादा दालें इस्तेमाल करना शुरू हो जाऊं, तो ये मुनासिब नहीं है। अपनी खुराक को मुतवाजन करें और उसके साथ अगर मेडिसिन की जरूरत है तो मेडिसिन भी करें, क्योंकि वो कहते हैं ना दुआ के साथ साथ दवा की भी जरूरत होती है,
0: बाज़ूकात
1: के दुआ ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन दवा अपनी जगह है,
0: बिल्कुल ऐसी
1: तो
0: बात है।
1: इसी तरह है कि आप एक चीज पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं, आप उसको बेहतर अंदाज से पकाएं, बेहतर अंदाज से खाएं, हाँ ये जरूर है कि वो आपकी तब जिस्म को एनर्जी देगी और उसमें आप बेहतर तरीके से उससे फायदा भी ले सकते हैं,
0: ऐसी बात है बिल्कुल,
1: और उसको हतमी इलाज समझना वो गलत है।
0: ठीक है।
1: तो बाकी ये तो है कि अगर मुतवाजन ग़िज़ा हो और मुनासिब मिकदार में हो तो फिर ही सेहतमंद जिंदगी जो है या सेहतमंद जिंदगी का जो तर्ज है जिससे हम गुजारते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ एक मुतवाजन और एक सेहतमंद जिंदगी जो है
0: ऐसी बात है, हाँ
1: मिलती है उसे दालों से। और दूसरा यह है कि हम अपने आप को अगर सही रखते हैं, हम अपनी खुराक पर थोड़ा सा तवज्जो देते हैं, खाली दालें नहीं, सब्जियां, सलाद और ये सब चीजें इस्तेमाल होती हैं, घी है, पनीर है, मक्खन है, दूध है, तो हम अपने जिस्म को बेहतर रख सकते हैं और ये अपनी जिंदगी को भी बेहतर कर सकते हैं। तो इसलिए आप दाल पे, ठीक है, दाल की एक अपनी फादियत है, दाल इस्तेमाल हो, लेकिन खाली दालों पे रहना,
0: ठीक है,
1: वो बेहतर नहीं है। तो बाकी सब्जियां, बाकी शौक है, लोगों को पसंद है, और ये जरूर है कि अगर आप इनके खासकर स्पेशली अगर चने के दाल के या चनों के फायदे देखेंगे,
0: ठीक है,
1: तो उसमें ये जरूर है कि वो प्रोटीन का जरिया
0: अच्छा,
1: है।
0: हकीम साहब ये बताइएगा कि चनों की दाल जो है ना सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है,
1: बिल्कुल होती है,
0: तो इसकी क्या वजह, हकीम साहब, कोई ऐसा इसका फायदा है, कोई खजाना है, इसके बारे में बताइएगा।
1: फायदा तो है, देखें चने बिल्कुल प्रोटीन का बहुत बड़ा जरिया है और इसमें फाइबर भी है, तो दूसरा यह कि आप उसकी ही दाल है तो जाहिर बात है कि दाल में भी प्रोटीन बहुत ज्यादा मौजूद होती है जिसके जिस्म को जरूरत भी है, और इसीलिए वो फिर लोग दालों पे ज्यादा, खासकर चने की दाल,
0: ऐसी बात है। हाँ।
1: तो अब बाकी कुछ उसको बनाने का तरीका होता है कि उसका एक अपना टेस्ट बन जाता है। अब इसमें दूसरा जो है वो फाइबर भी मौजूद होता है, तो वो वैसे ही हमारे जो है निजामे हजम के लिए बहुत अच्छा है, हमारी आंतों में जो है वो बेहतर करता है, हमारा स्टूल जो है वो बेहतर तरीके से पास हो जाता है। तो बाकी फिर इसमें ये होता है कि आप चने की दाल अगर खाते हैं तो उससे आपका ये जो पेट है वो भी आपको महसूस होता है कि हाँ मेरा पेट भर गया है, यानी चावल खा ले तो हमें भूख का एहसास फिर भी रहता है कि अगर भूख है अभी, लेकिन अगर चने की दाल लेते हैं तो उससे हमें महसूस होता है कि हाँ हमारा पेट जो है वो भरा है। बाकी अगर दालों को दें तो फिर दिल के लिए भी बेहतर है, एक मुतवाजन गिजा है, बस फर्क इतना है कि इसमें ज्यादा चिकनाई जैसे ऑयल वगैरह वो इस्तेमाल ना हो, ज्यादा मसाले इस्तेमाल ना हो, तो फिर ये दालें दिल के लिए भी बेहतर हैं।
0: ठीक है,
1: बाकी सब्जियां दालें एक मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल हो तो बेहतर है। फिर इनमें देखा जाए तो आयरन भी है, मैग्नीशियम भी है, पोटाशियम भी है, यानी इसमें मादनियात का भी बेहतरीन जरिया है, इसीलिए दाल ज्यादा इस्तेमाल होती है और खाई जाती है, जिस्म को ताकत देती है, प्रोटीन देती है। फिर अब ये आ जाता है कि बाज लोग जो हैं, खासकर डायबिटीज पेशेंट जो है, वो भी चने की दाल खाते हैं,
0: बाकी
1: चने की दाल आटे का रोटी बना के खाते हैं या चने के आटे की रोटी बना के दें।
0: ठीक है,
1: तो उसमें यही है कि उसकी शुगर लेवल जो है वो बढ़ता नहीं है, बल्कि एक मुतवाजन ही रहता है, और दूसरा उसके जिस्म को तवानाई भी मिलती है।
0: ठीक है,
1: फर्क इतना ही है कि आपने उसको पकाने का अंदाज अपना रखना है, उसमें मिर्च मसाले ना हो, और दूसरा ज्यादा वो जो है ऑयल वगैरह ना हो।
0: ठीक है,
1: ठीक है ना, तो इस डायबिटीज पेशेंट जो है वो ले सकता है उसे, तो उसको तो बेचारे को वैसे भी भूख लगती है।
0: अच्छा हकीम साहब, मैंने ये सुना है कि शुगर वाले बंदे को भूख ज्यादा लगती है।
1: बिल्कुल लगती है, क्योंकि उसको हो सकता है दिन में वो दो तीन दफा क्या चार पांच दफा खाना मांग ले, थोड़ा थोड़ा खाएगा।
0: अच्छा, शुगर के पेशेंट?
1: हाँ, अमूमन है,
0: यानी उसको वक्फे वक्फे से जाना भूख लगती रहे,
1: उसको भूख लगती है बेचारे को, क्योंकि वो डरता है ज्यादा ओवरडोज होने से, तो वो इसलिए फिर अपने हिसाब से कर, चलो थोड़ा बहुत जो है वो अपने लेते हैं, ताकि एक हमारी जो जरूरत है या हमारी जो भूख है वो तो कम से कम हमें एक तवानाई तो मिले ना।
0: ठीक है हकीम साहब, वैसे वजह क्या है शुगर में भूख लगने की?
1: वजह ये है कि एक तो कमजोर होता है, जाहिर बात है उसकी इंसुलिन की मिकदार बड़ी होती है,
0: ऐसी बात है।
1: अब वो उसे वैसे ही कहा जाता है कि यार ये तूने नहीं खाना, ये नहीं खाना, इतना खाना है, तो बेचारा खाएगा क्या?
0: ऐसी बात है,
1: ताकत जो मिलनी है वो उसे रोटी से मिलनी है, ना वो फ्रूट से मिलनी है, ना वो चावलों से मिलनी है, तो जाहिर है कि उसको खुराक तो पूरी हो। फिर दूसरी है कि चने की दाल स्पेशली जो है,
0: हाँ जी,
1: ये कब्ज के लिए भी बेहतर है।
0: ठीक है,
1: ठीक है, क्योंकि अगर हम इसे बेहतर तरीके से अंदाज इस्तेमाल करें तो जाहिर बात है कि स्टूल भी ठीक होगा, और इसमें फाइबर भी है। दूसरा फिर यह है कि इसके साथ पानी अगर पिया जाए मुनासिब मिकदार,
0: ऐसी बात है,
1: तो वो भी बहुत जरूरी है। बाकी इसके जो है, हाँ, इसके कुछ थोड़े से नुकसान भी हो जाते हैं, क्योंकि जब आप इसे एक मुतवाजन तरीके से तैयार नहीं करते हैं,
0: ठीक है,
1: तो फिर इससे बाज़ुकात पेट भी फूलना शुरू हो जाता है, इससे डिकारे भी आती हैं, इससे गैस भी बन जाती है, पेट में भारीपन भी महसूस होता है, तो इसलिए इन्हें जो है थोड़ा सा एहतियात से या मुतवाजन तौर पर इसे तैयार करें, मिसालों से गुरेज करें, और अपनी एक जो लिमिट है, बाजे होता है कि बहुत ज्यादा खाने पे, या बाजे ऐसे लोग भी देखे हैं जो दालें उठा के पीते हैं बाद में,
0: अच्छा,
1: या
0: अच्छा, हाँ, पीते हैं,
1: या दाल चमचेदार दे दें, तो चीज ये है कि आप उसको एक मुतवाजन तौर पे लें, खुराक के तौर पे लें, तो वो आपके लिए बोझल नहीं बनेगी,
0: ऐसी बात है,
1: बल्कि वो आपके काम आएगी। और जहां तक है इसमें ज्यादा घी ज्यादा तेल उसका इस्तेमाल ना हो, मुनासिब मिकदार में हो, तो यही दाल जो है वो आपके लिए फायदेमंद भी साबित हो सकती है। और बाज ऐसे भी लोग देखे हैं, बाज ऐसे पेशेंट भी आए हैं जिनको दालों से या चने से एलर्जी भी होती है।
0: हाँ, वो यानी खाते हैं तो उनको जो है ना,
1: हाँ, वो पसंद ही नहीं करते,
0: एग्रीवेट कर जाती है,
1: वो कहते हैं यार इसमें हमें खारिश हो सकती है, बाज दफा होती है, बाज सोजन हो जाती है, बाज दफा सांस में दुश्वारी हो जाती है,
0: बिल्कुल ऐसी
1: तो
0: बात है।
1: इसलिए फिर ये है कि अगर ऐसी चीज है तो वो वैसे ही अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर फिर भी वो महसूस कर रहे हैं तो फिर ये है कि आप बजाय दाल चने की इस्तेमाल करने के आप पहले मुआलिज से मशवरा करें,
0: ऐसी बात है,
1: और अगर करते भी हैं तो फिर मुनासिब मिकदार में करें, लेकिन उसमें तेज मसाला जात ऑयल या घी इसकी जरा थोड़ा सा एहतियात करें, और अच्छी तरह जो है दाल को पहले भिगो लें, भिगोने के बाद उसे धोएं, फिर उसको मुनासिब अपने तरीके से पकाएं, तो इससे दाल नरम हो जाएगी और दूसरा यह है कि वो जल्द हजम भी हो जाएगी।
0: ठीक है,
1: तो बाकी कुछ लोग जो है वो इसमें सब्जियां भी डालते हैं दालों में, अगर आप सब्जी भी डालते हैं तो कम अज कम जो वो मुरक्कब बनेगा वो फिर अच्छा साबित होगा बॉडी के लिए।
0: बिल्कुल हाँ।
1: और जहाँ तक है इसका आप कितनी मिकदार ले सकते हैं तो वो तो जाहिर बात है आप कम मिकदार में ही लेंगे, ज्यादा मिकदार में लेंगे तो वो आपके लिए मुनासिब ही नहीं है।
0: बिल्कुल ऐसी बात है।
1: तो बाकी आखिर में तो यही कहा जा सकता है कि दालें बिल्कुल आजकल तो दालें भी सस्ती ही नहीं है, अगर देखा जाए तो दालें भी महंगी हैं,
0: दालें भी महंगी,
1: लेकिन यह है कि गोश्त का मुतबादिल है, आप उसे इस्तेमाल करें, कुदरत ने इसमें भी अपनी एक अफादियत भी रखी है, काफी मर्जों से भी बॉडी की ताकत के लिए
0: ऐसी बात है।
1: तो आप सब्जियों के साथ साथ या गोश्त के साथ साथ दालों को भी तरजीह दें।
0: बिल्कुल ऐसी बात है।
1: उससे यह है कि आपका एक तो आपका मैदा उस चीज का आदि होगा, आपके बॉडी में उसकी ताकत आपको उसको बेहतर मिलेगा, और दूसरा यह है कि आप उसको अच्छे तरीके से पकाएं और उसका आप बेहतरीन तौर से उससे फायदा भी उठा सकते हैं। हाँ ये जरूर है कि खुराक को खुराक ही समझें,
0: ऐसी बात है,
1: उसको दवा का मुतबादल ना समझें। आप उसे खुराक के हम खुराक के तौर पे लेंगे,
0: ऐसी बात
1: आप उसको इलाज ना तसव्वुर करें कि ये इलाज है, चाहे वो सब्जी है कोई या दाल है या गोश्त है, वो उसका दवा नहीं हो सकता। हाँ ये जरूर है कि खुराक है, गिजा है, आप उसको गिजा ही जाने दें तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आ सकता। बाकी आप अपनी एक्टिविटीज खुद देखें, अपनी नींद पूरी करें, अपनी मुतवाजन खुराक रखें,
0: ठीक है,
1: मुनासिब पानी पिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूर करें, और इस तरह आप अपने आप को महफूज भी रख सकते हैं, सेहतमंद भी रख सकते हैं, और बाद में यही कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला से दुआ ही की जा सकती है कि हम सबको जो है एक सेहत तंदुरुस्ती और इत्तदाल वाली जिंदगी जो है वो अता फरमाए।
0: आमीन, आमीन, आमीन। बहुत मेहरबानी। सो लिसनर्स, आप अवस्था हैं रेडियो अमन 88.4 टांग के साथ, सेहत का पैगाम आप समाज फरमा रहे हैं, और अभी आपने गुफ्तगू समाज फरमाई हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब की। तो खवातीन हजरात, सेहत का पैगाम जो कि अलशिफा दवाखाना के खसूसी तामुन से आपकी खिदमत में रोजाना 7 बजे से लेकर 8 बजे तक बिल्कुल लाइव और बराह रास्त पेश किया जाता है। आपका कोई भी सेहत के हवाले से मसला है, किसी मेरी बहन का है, किसी मेरे भाई का है, सो बिल्कुल आप अलशिफा दवाखाना में आ सकते हैं। अलशिफा दवाखाना, शवाल मार्केट, नज्द, ट्रैफिक प्वाइंट, टांग सिटी। हकीम साहब कल मौजूद होंगे सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक, अलशिफा दवाखाना, शवाल मार्केट, नज़्द, ट्रैफिक पॉइंट, टांग सिटी। मज़ीद तफ़सीलात और मालूमात के लिए, और आपकी बहुत सारी कॉल्स आई लेकिन हम प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बना सके, सो अभी आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं, हकीम साहब से बात कर सकते हैं 09635114888 पर और 03155343404 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
2: क्या नहीं भाई, ठीक ठाक खैरियत है?
0: अल्लाह का शुक्र है जी। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: जी मैं रिया खान से किस्मत अला मसूद बोल रहा हूँ।
0: जी मेरे भाई, क्या पूछना चाहेंगे हकीम साहब से आप?
2: हकीम साहब से मेरा ये पूछना है, मुझे को थोड़ा से खारिश थे, पीना ही नहीं कहता है पश्तों में, तकरीबन 3.5-4 साल हो गया थे मेरा ये बीमारी, मैंने बहुत ज्यादा दवाई खाया है और जो है ना बहुत ज्यादा इलाज मैंने किया है और कोई फर्क मेरा नहीं होता ये।

0: सकते हैं अलशिफा दवाखाना में, अलशिफा दवाखाना, शवाल मार्केट, नज़्द, ट्रैफिक पॉइंट, टांग सिटी। क्योंकि जनाब हमारे आसपास बहुत सारी बीमारियां हैं, टांग में तो वैसे भी बहुत सारी बीमारियां हैं, हर जगह में देखा जाए तो आजकल दौर ही ऐसा चल रहा है कि सब बीमारियां बीमारियां हैं, हर बंदे परेशान,
1: बिल्कुल ऐसा हर आदमी परेशान है,
0: खांसी है, जुकाम है, एलर्जी है,
1: हवा शामिल है, पानी है, खुराक है, टेंशन, डिप्रेशन, ये तो है। तो ये चीजें जो है फिर उसको थोड़ा सा
0: ऐसी बात
1: मसला बना जाती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। सो सामी निकराम, अगर आप कभी कोई सेहत के हवाले से सवाल है, आप हकीम साहब से पूछना चाहते हैं इस प्रोग्राम में, तो आप बिल्कुल हमें ज्वाइन कर सकते हैं 0319-55-23-404 पर कॉल के लिए, एसएमएस के लिए 0319-55-23-404 पर आप लाइव कॉल एसएमएस कर सकते हैं। इसके अलावा 0963-511-488 पर, यानी 0963-511-488 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। चाहे आपका सेहत के हवाले से कोई भी सवाल है, आप हकीम साहब से पूछ सकते हैं। बिल्कुल जनाब, तुसा ही कॉल कर सकते हुए 0963-511-488 0319-55-23-404 कॉल कर सकते हुए, मैसेज कर सकते हुए, तो हकीम साहब के कुल सेहत के हवाले देना सवाल पूछ सकते हुए। अब बिल्कुल जनाब, ग्रान वार विदुन को कसा सहम दचीर दी सेहत वाले सर सवाल भी हकीम से अपना तो पुस कवल वार। बिल्कुल जनाब, सासु काल कवल सो 0963-511-488 बंदे और 0319-55-23-404 बंदे हम सासु काल कवल सो। जी हकीम साहब, एक मैसेज मेरे पास आया है।
1: जरूर।
0: कहते हैं कि अनस भाई, मेरे पाँव की उंगलियों में पानी की वजह से जख्म हो जाते हैं, कोई हल बता दो। रोशन जमीर अटल शरीफ से हमें सुन रहे हैं। जी,
1: उसके लिए तो मुख्तलिफ मरहम भी हैं और ये खुद भी तैयार कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर बाजार से भी लेना चाहें तो मिल जाती हैं। दूसरा एहतियात करें, जरा बाजुकात होता है अगर पानी में ज्यादा रहने से भी, कुछ बाजुकात खारिश या एलर्जी की वजह से, तो इसमें यह है कि आप या तो सरसों का तेल भी लगा सकते हैं, उससे भी आपको बहुत ज्यादा उससे फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर वहाँ जख्म है या उसमें से कोई पानी रिस रहा है तो फिर यह है कि आप अगर हो सके तो दवाखाने से मरहम मंगा सकते, वो भी आप लगा सकते हैं, तो उससे इंशाल्लाह ये उंगलियां बिल्कुल ठीक हो जाएंगी।
0: ऐसी बात है। सो हकीम साहब, एक मसले के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ओसीडी के बारे में। ओसीडी क्या है हकीम साहब, जरा इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये किस तरह का मसला है, ये किस तरह का डिसऑर्डर है।
1: देखें, मुख्तलिफ है। अब
0: जी जी,
1: देखना तो ये है कि मरीज क्या है, उसकी उम्र क्या है और उसका मर्ज के मुताबिक उस जब मरीज आएगा उसकी तशीस होगी या उसकी रिपोर्ट्स होगी,
0: ठीक है,
1: तो उस पे बेहतर राय दी जा सकेगी। है मुख्तलिफ मर्जें, कुछ ऐसी हैं कि जो शायद उस पे हम इतनी तफसील से बातचीत ना कर सके।
0: ऐसी बात है।
1: लेकिन जिस टाइम मरीज आता है तो फिर उसके मुताबिक जो है उसको देख के और उसके मुताबिक उसको बेहतर मशवरा दिया जा सकता है।
0: ऐसी बात है। सो खवातीन हजरात, अगर आपका भी कोई सेहत के हवाले से सवाल है, आप मोहतरम हकीम साहब से पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं 0319-55-23-404 पर। और हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब कल सारा दिन अपनी क्लिनिक में मौजूद होंगे, सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक, और मरीजों का चेकअप आना जारी रहेगा। तो बिल्कुल आप आ सकते हैं, आपका कोई भी सेहत के हवाले से मसला है, कोई ऐसा मसला है जिसका आपने बहुत ज्यादा इलाज कराया हो, इलाज करा करा के आप थक चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, तो खवातीनों हजरात, एक आप लोगों के लिए एक मौका है, आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि इतने तजर्बाकार और काबिल हकीम आपके शहर टांग में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो बिल्कुल आप अपना इलाज करा सकते हैं सेहत के हवाले से। आपको कोई भी मसला है, आपको बवासीर है, आपके गुर्दे के मसले हैं, आपके मसाने के मसले हैं, आपके मैदे के मसाइल हैं, आपको दर्दों के मसाइल हैं, आपकी जिल्द के हवाले से मसाइल हैं, रदर देन आपको कोई भी बीमारी है, इंशाल्लाह हर किस्म बीमारी का तसली बख्श इलाज किया जाता है अलशिफा दवाखाना में, अलशिफा दवाखाना, शवाल मार्केट, नज़्द, ट्रैफिक पॉइंट, टांग सिटी। तो बिल्कुल एक और मैसेज भी हमारे पास आया हुआ था, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, अनस भाई को सलाम और हकीम साहब आपको भी सलाम। कहते हैं कि अनस भाई, क्या शो बराह रास्त है? बिल्कुल जनाब, शो बिल्कुल लाइव है, बराह रास्त है, मैं और हकीम साहब इस वक्त लाइव मौजूद है। ऐसी बात है ना,
1: बिल्कुल स्टूडियो में हम मौजूद।
0: ऐसी बात है। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی کون اور کہاں سے میرے بھائی؟
2: بھائی میں تو کرک سے بات کرتا ہوں.
0: کرک سے بات کرتے ہیں جی. کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے؟
2: یہ ڈاکٹر کا نمبر ہے؟
0: ہاں جی یہ حکیم صاحب کا نمبر ہے. آپ نے حکیم صاحب کے پروگرام میں کال کی ہوئی ہے.
2: اچھا چلو ٹھیک ہے میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں.
0: ہاں جی ہاں جی ہاں جی یہ حکیم صاحب موجود ہے, اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی لیکن ان کی کال بھی ڈراپ ہو چکی ہے. سو میسج حکیم صاحب, یہ ایک دوسرا بھی میرے پاس آیا ہوا ہے کہ السلام علیکم انس بھائی, آپ کو بھی سلام, حکیم صاحب کو بھی سلام.
1: وعلیکم السلام.
0: اور کہتے ہیں کہ حکیم صاحب سے انس بھائی پوچھیں کہ آدھے سر کا درد ہے, اس کا کیا علاج ہے؟
1: اس کا علاج مکمل ہے مائگرین کا یا درد شقیقہ کا. اس کے لیے پہلی بات ہے کہ مریض اگر دواخانے پہ آ جاتا ہے تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ ایسے مریض کو تھوڑا سا ڈسکس کرنا ہوتا ہے, اس سے اس کو تسلی بھی دینی ہوتی ہے, کیونکہ یہ مریض جو ہے یہ تھوڑا سا تنہائی پسند ہو جاتا ہے.
0: ایسی بات ہے.
1: تو اس لحاظ سے اس مریض کو تھوڑا سا بریف بھی کرنا ہے اور اس کا علاج بھی ہے. لیکن اس کا علاج موجود ہے اور انشاءاللہ ہربل میڈیسن میں اس کا علاج جو ہے وہ مستقل طور پہ ہے.
0: ایسی بات ہے. سو حکیم صاحب ایک اور میسج بھی ہے, کہتے ہیں کہ انس بھائی حکیم صاحب سے خارش کا علاج پوچھیں, شکریہ. سو یہ کچھ میسجز حکیم صاحب ہمارے پاس رہ رہے تھے,
1: ٹھیک ہے
0: وہ میں ریڈ کر
1: لوں. خارش اب دیکھنا یہ ہے مریض کو کہ خارش تر ہے, خشک ہے, اس میں سے کوئی پانی وغیرہ یا ایسا کوئی مواد تو نہیں رشتہ, تو یا دوسرا یہ کہ دانوں کی شکل تو نہیں ہے. تو مریض اگر خارش کا ہے تو پہلی تو کوشش یہ کرے کہ اگر دواخانے پہ آ سکتا ہے تو آ جائے. اس میں یہ ہے کہ ایک تو مشورہ بھی اور دوسرا اس کی سکن یا اس کی اس ٹائم کی حالت ہے وہ دیکھ کے اس کے مطابق اس کی دوائی تو ہے, اور انشاءاللہ پہلے دن سے ہی خارش میں افاقہ آنا شروع ہو جائے گا.
0: ٹھیک ہے. سو ایک اور میسج ہے کہ السلام علیکم انس بھائی, زرت مسنکی کی سب وجہ کے دیشی آفیہ نور ہمیں سن رہے ہیں. جناب حکیم صاحب ہماری بہن آفیہ نور کہہ رہی ہیں کہ میرے دل کو کوئی بھی چیز نہیں چاہتی, یعنی کہ میرا دل کسی چیز کے لیے کرتا نہیں ہے,
1: صحیح,
0: کھانے کے لیے کوئی کام کرنے کے لیے, تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے حکیم صاحب؟
1: ان کی خواہش ہی نہیں ہے نا کرنے کی. اب اس کی کئی وجوہات ہیں, ہو سکتا ہے کہ بس تھوڑا آرام پسند ہو, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ ان کے مزاج کے مطابق نہ ہو. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمارے مزاج پہ نہیں آتی تو ہم اس چیز کو اگنور کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اب ایک کلیئر ذرا تھوڑا سا کریں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. ان کی عمر کتنی ہے یا اس کے علاوہ ان کی جو ہے طبیعت
0: ٹھیک ہے
1: وہ کیسی ہے, تو پھر اس کا بہتر اور مکمل طور پہ جواب بھی دیا جا سکتا.
0: چلے چلے ٹھیک ہے. ایک اور میسج ہے کہ السلام علیکم حکیم صاحب, میری عمر 23 سال ہے اور میں روزانہ انڈوں کا بہت زیادہ شوقین ہوں, روزانہ 6 سے 7 انڈے گھی کے ساتھ مکس کر کے سوکھی روٹی کی طرح پکا کر کھاتا ہوں, اس کا فائدہ ہے یا نقصان؟ جی حکیم صاحب بتائیے گا.
1: انہوں نے کیا محسوس کرا ہے؟ اس سے فائدہ نہیں ہے ابھی تک. بات یہ ہے کہ انڈے, 2 انڈے اگر ہم روز کے کھاتے ہیں تو اس کا ہماری باڈی پہ بہت زبردست اثر ہوتا ہے. لیکن انڈے ابلے ہوئے ہوں, بوائلڈ ہوں, اور یا فرائی اور آملیٹ کی شکل میں نہ ہوں, آپ 2 انڈے ابالیں اور انہیں آپ استعمال کریں تو وہ آپ کی باڈی پہ خاطر خواہ اثر دیں گے, لیکن ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ تو آپ کے معدے پہ بوجھ بنائیں گے.
0: اچھا گرم ہوتے ہیں نا کہ
1: انڈے؟ بات گرم کی نہیں ہے, گرمیوں میں بھی انڈے استعمال ہوتے ہیں. آپ انڈے ایک اس سے پروٹین, اس سے بہتر توانائی لیتے ہیں آپ اس سے,
0: ایسی بات ہے.
1: لیکن پر اتنا ہے کہ آپ اسے اس ڈوز میں لیں گے جو آپ کے میدے پہ بوجھ نہ بنائے,
0: ایسی بات,
1: بھاری پن نہ پیدا کرے, پیٹ میں کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ کرے, تو پھر وہ آپ کے لیے بہتر ہے. لیکن جب آپ اس کی ایک ڈوز تو رکھیں, اب 8-10 انڈے یا بازے انڈے لوگ پینا شروع کر دیتے, کچے انڈے پیتے ہیں,
0: یہ بھی ہم نے بڑا دیکھا سنا ہے.
1: یہ ہے کہ آپ اس کو پہلے اس کے دیکھ تو لیں کہ اس کے بعد میں آنے والے وقتوں میں جو نقصان ہے وہ کیا ہو سکتا ہے.
0: ایسی بات ہے بالکل.
1: آپ بے شک انڈے کھائیں لیکن انڈوں کی ایک مقدار رکھیں,
0: ایک
1: لمٹ ہو جائے. 2 انڈے بہت ہیں, 2 انڈے روز کی روٹین کے مطابق بھی لیں تو انشاءاللہ ان کے جسم کو طاقت ہی ملے گی, بیکار نہیں جائے گا.
0: ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جی کون اور کہاں سے میری بہن؟ ہیلو हेलो जी जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, मेरी बहन जरा ऊंचा बोलिएगा। हेलो, आवाज मेरी बहन आपकी बहुत कम आ रही है, जरा जगह चेंज करिएगा। हेलो
3: हेलो
0: जी जी, क्या पूछना चाहेंगी हकीम साहब से आप? जी तो मेरी बहन आपकी आवाज जो है ना बहुत ज्यादा कट रही है, सो काइंडली जगह चेंज करके हमें कॉल कीजिए 0319-55-23-404 पर और 0963-511-488 पर आप कॉल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सो जी कॉल इनक्यूबी ड्रॉप हो गई है। हकीम साहब मैसेज आया हुआ था, मैसेज पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, जमानु मा सिम दे जद वजीरिस्तान नहीं हो और वैसे हकीम साहब ना पता वका अनस भाई के सर मीडिया ज्यादा दर्द कभी और बला मसला चक्कर डीर राबंदे राजी लगता मसला हल रहा वखाया। अच्छी हकीम साहब एक भाई हैं यहाँ से वजीरिस्तान से, हमें सुन रहे हैं और कहते हैं कि मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द होते हैं और चक्कर आते हैं, इसके बारे में हकीम साहब से पूछें। जी हकीम साहब,
1: इसकी कई वजूहत हो सकती हैं, लेकिन अगर ये वजीरिस्तान से हैं तो अब या तो ये बिल मुशाफा मिल लें,
0: हाँ ये भी
1: तो उससे ये पता चले कि आखिर में सिर में दर्द है और मुकम्मल सिर में है, वजह क्या है और कब से है,
0: ऐसी बात
1: ज्यादा देर से है। अब उसमें कई वजूहत हैं, वो भी इससे जानना जरूरी है, लेकिन इंशाल्लाह उसका इलाज मौजूद है और इनके सर की दर्द खत्म हो सकती है। इसके साथ साथ अगर ये थोड़ा सा अपने पट्ठों में भी खिंचाव या कमजोरी महसूस कर रहे हैं,
0: ठीक है,
1: या एक याददाश्त पे फर्क आया तो वो भी काफी हद तक जो है खत्म हो जाएगा।
0: चलें ठीक है। एक और मैसेज है कि अनस भाई हकीम साहब को कहें कि जुकाम के बारे में बताएं जरा। जी हकीम साहब,
1: जुकाम के पीछे हमारा इस पे मेरे ख्याल से प्रोग्राम भी हुआ था,
0: हमने पूरा जो है ना
1: जुकाम पे, बाकी क्योंकि ये मौसम ऐसा चल रहा
0: है बिल्कुल, हाँ।
1: उसमें तो इसमें सबसे जरूरी तो यही है कि आप थोड़ा सा एहतियात करें और कोशिश करें कि अपनी खुराक जो है उसको जरा थोड़ा सा बेहतर कर लें, यानी ऐसी चीज ना हो जैसे बहुत ज्यादा हम ठंडी चीजें भी बाधे, ठंडा पानी बाधे लोग अभी तक पी रहे हैं। दूसरा कि आप एक अंडा जो है उबला हुआ उसको लाजमी अपनी खुराक में रखें,
0: ठीक है,
1: और अगर हो सके तो उस पे बजाय इसके कि आप थोड़ी आप लेमन ग्रास या सब कावा उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ के वो भी पी सकते हैं, वो भी इसके लिए बहुत बेहतर है।
0: चलिए ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम
0: जी
4: भाई, कैसे हैं आप? चलिए से
0: अलग के शुक्र है मेरे भाई, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
4: जी मैं अली खान से बात कर रहा हूँ। अनस भाई हकीम साहब बड़े मोहतरम है हमारे लिए, बहुत हम प्यार करते हैं इससे माशाल्लाह, तो मैं चाहूंगा कि इनसे अपनी थोड़ा सा गैस के बारे में पता करना चाहूंगा जो सीने में हर वक्त भरी रहती है और डकार आने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ता और बहुत परेशानी का सामना, बाकी बलगम की शिकायत तो आम है, बड़ी अद्वियात भी है ये जो मतलब मेडिकल अंग्रेजी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं चाहता हूँ हकीम साहब से कुछ इस बारे में।
0: ठीक है मेरे भाई, ये बताइएगा कि आपकी उम्र कितनी है, कितने साल के हैं आप?
4: तकरीबन मेरी उम्र 32 है।
0: 32 है, ठीक है मेरे भाई, रेडियो आप सुने, हकीम साहब से मशवरा करते हैं इसके बारे में।
4: थैंक यू सो मच।
0: ओके वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। जी हकीम साहब
1: जी,
0: क्या मशवरा देंगे आप हमारे भाई?
1: मोहतरम भाई का मशवरा तो यही है कि आप इसके लिए, हमने पीछे अपने प्रोग्राम में नुस्खा भी बताया था,
0: ऐसी बात है,
1: और अगर वो इन्होंने ट्राई नहीं करा तो वो पहले जरा ट्राई करके देख लें। उसमें अजवाइन थी, जीरा था, सौंफ थी और मेथी दाना था, ये चार चीजें हैं, वजन थी और इसके साथ साथ इनको बढ़िया करके इनको पीस के रखना था, फिर इसके साथ साथ उसमें तकरीबन काला नमक था,
0: ऐसी बात है बिल्कुल, हाँ।
1: तकरीबन 10 ग्राम के करीब और 5 ग्राम के करीब हिंग थी, लेकिन हिंग भी लेके और उसको भी तवे पे भूनना था,
0: ऐसी बात,
1: फिर इनको हाँ। दोनों को मिक्स करके और बाकी के फार्मूला जो आपने लिया है उसमें डाल के तो आप आधा आधा चमचा लें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी जो गैस की प्रॉब्लम्स है,
0: ठीक है,
1: पहले तो वो हल हो और जो तेजाबियत बन रही है, बाद दवाई होता है कि हमारी वजूद में तेजाबियत बन रही होती
0: है, बात है हाँ।
1: कुछ हम दवाइयां वक्ती तौर पे तो लेते हैं, सीरप हैं, टेबलेट्स हैं, आजकल तो साशे आए हुए हैं
0: और
1: बेशुमार कैप्सूल्स हैं, लेकिन वो प्रॉपर हल नहीं है। उसके हल के लिए सबसे पहले आप अपनी खुराक को भी देखें, अगर खुराक ऐसी है खुराक में थोड़ी सी रद्दो बदल कर लें तो फिर ये चीज काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है। ये
0: ऐसी बात है,
1: छोटा सा एक नुस्खा है, ये ट्राई करके देख लें

0: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jhon Rang Amar. Welcome to Radio Amar 88.4. You are listening to Radio Amar Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: Your station.
0: You are listening to Radio Amar Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
3: दरअसल पहले मैंने टिकटॉक पे एक राइस फेस वॉश देखा था जिसको मैं ऑनलाइन मंगवाती थी, मगर इसका रेट बहुत ही ज्यादा हाई था। फिर मुझे किसी ने इश्मा राइस फेस वॉश का मशवरा दिया। इसी वक्त से लेकर आज तक मैं इश्मा राइस फेस वॉश इस्तेमाल कर रही हूँ और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। सब बहन भाइयों को यही मशवरा देती हूँ कि इश्मा राइस फेस वॉश इस्तेमाल करें, ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसकी कीमत जो है वो 350 रुपए है। ओडीआई खान और मुख्तलिफ केपीके के इलाकों में हर छोटी बड़ी शॉप पर दस्तियाब है। स्पेशली उन बहन भाइयों के लिए जिनके चेहरे पर एक्नी है और आयल का मसला है। मजीद मालूमात के लिए 0342-311-2292 पर